0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोप्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास

विकास महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं, 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति. ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः.
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दल सदस्याः नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्. केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविन्द मोहना लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ. तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षाया प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान विरुद्ध्य दृढ़ निग्रह कर्तुम अथ राष्ट्रस्य यूनाम हितस्य संरक्षण च पुनः उद्घाटितवान. असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति. प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्. वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती. उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्. स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभय देशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति. सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति. अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति. भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दाम् अकरोत्. तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्. नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्. विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति.

0: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
3: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
4: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय बने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित

0: किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों की विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Drobdi Murmu calls for significant

0: नौकरी देने के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज। रियासत के 177 तरजीही तालुखाजात में तजुर्बाती बुनियादों पर तरक्याती मंसूबों पर अमल आवरी को रियासती काबीना की मंजूरी। और मराठवाड़ा के कई इलाकों में मुसलसल बारिश, आज भी बेशतर अजला में बारिश की पेशन गोई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म दफ्तर के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत नीट पर्चे अफशा मामले और इससे मुतालिका मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं और कारकुनों ने कल इस मसले पर वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया। इसके बाद जितेंद्र सिंह बोल रहे थे। उन्होंने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, राहुल गांधी और दीगर कायदीन से बातचीत की। सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने इस मसले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए कोई दरख्वास्त पेश नहीं की है। उन्होंने कहा,
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: जितेंद्र सिंह ने शहरियों को होने वाली तकालीफ के पेश नज़र मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील भी की। ताहम खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अपील के बाद भी एहतजाज जारी रखने पर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद रिहा कर दिया। दरियासना नीट पर्चा अफशा मामले समेत मुख्तलिफ मसाइल पर हिज्ब इख्तलाफ के हंगामे की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम मुतालिका एजेंसियों से अपील की है कि वो मुस्तकबिल में सवालिया पर्चे अफशा होने के मामलात को रोकने के लिए मुश्तरका तौर पर ठोस इकदामात करें। वज़ीर आज़म कल नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद की पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने सवालिया पर्चे अफशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के अपनी हुकूमत के अज़्म का इआदा भी किया। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने बताया कि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि नीट सवालिया पर्चा अफशा मामले के तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने कहा,
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: रिजिजू ने हिजब मुखालिफ जमातों से अपील की कि वो पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास के काम में ताउन करें। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने अदालत उज़्मा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के 6 बागी अरकान पार्लियामान की शिवसेना में शमूलियत को मंजूरी देने के फैसले को चैलेंज किया है। देवदत्त कामत ने यह अर्जी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच पर दायर की है और इस पर कल समाअत करने की दरख्वास्त की है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी की वजह से महाराष्ट्र में बखिया 20 ज़िला परिषदों के इंतखाबात को 1 साल के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता। अदालत ने कल रियासती इंतखाबी कमीशन को वोटर फहरिस्त पर नज़रसानी के काम करने वाले अहलकार इन इंतखाबात के कामों के लिए दस्तियाब होंगे या नहीं इस बात की वजाहत करने की हिदायत भी दी। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। मरकजी अद्वियात मियार कंट्रोल इदारे ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू की वैक्सीन कोडेंगा की फरोख्त की इजाज़त दे दी है। डेंगू से बचाव के लिए मुल्क में मंजूर होने वाली ये अव्वलीन वैक्सीन है और इसे 4 साल से 60 साल की उम्र के अफराद के डेंगू से बचाव के लिए मंजूरी दी गई है। रियासती काबीना के कल मुनाक़िदा इजलास में रियासत के 177 तरजीही तालुखाजात में तजुर्बाती बुनियादों पर तरजीही तालुखा तरक्याती प्रोग्राम पर अमल आवरी को मंजूरी दी गई। इनमें धाराशिव, हिंगोली, जालना, बीड़ और परभनी समेत 10 अजला

ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। हुकूमत पार्लियामेंट में नीट समेत तमाम मौजूदात पर बहस के लिए तैयार है, वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वजाहत। मुस्तकबिल में सवालिया पर्चे अफशा होने के मामलात की रोकथाम के लिए मुश्तरका इकदामात करने की वजीर आजम की तमाम मुतालिका इदारों से अपील। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की जानिब से छः मुनहरिफ अरकान पार्लियामान की शिवसेना में शमूलियत को मंजूर।

ज़ेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा, तेरी बुलंदियों का इदराक हो रहा है। ज़ेरे मुतालिया है जब से कलाम तेरा, मुस्लिम हों या के हिंदू, ईसाई हों के सिख हों, मुस्लिम हों या के हिंदू, ईसाई हों के सिख हों, दिल में बशर बशर के है ये एहतराम तेरा। मुस्लिम हों या के हिंदू, ईसाई हों के सिख हों, दिल में बशर बशर के है एहतराम तेरा। फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में, अर्ज किया है कि फिरता रहा मगन

0: वो वहदत के गुलशनों में जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा, फिरता रहा मगन वो वहदत के गुलशनों में जिसने भी पी लिया है एक बार जाम तेरा। आखिरी शेर है हमद का कि हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, पहुँचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। हम ऐसे आसियों को तौफीक दे इलाही, पहुँचाएं जाके घर घर हम भी पयाम तेरा। दिल में है तेरी अजमत, लब पर है नाम तेरा, तुझसा नहीं है कोई यकता मकाम तेरा। अब नाते पाक के कुछ शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाहजा फरमाइए।
1: रोशन रोशन आपकी सीरत,

का नाम। मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब फैजान हुआ। मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब

बारिये ताला और नाते रसूल पेश कर रहे थे डॉक्टर ताबिश मेहदी। और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे। और चलिए श्रोताओं, अब इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है, जो भारतीय होने का एक एहसास दिलाती है। उसी तिरंगे झंडे के लिए 22 जुलाई यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है और ऐतिहासिक भी, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार तिरंगे को अंगीकार किया गया था। 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया। इस बैठक में आजाद भारत के लिए एक झंडे का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि केसरिया, सफेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलावों के साथ आजाद भारत का झंडा बनाया जाएगा। और इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। और जब भी तिरंगे की बात होती है तो अपने आप जो आजादी का दिन है वो याद आ जाता है, तो क्यों ना ये जो गीत बज रहा है अंडर प्ले में, इसे सुन लेते हैं।

0: और आइए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड ब्रेन डे की बात करते हैं।
1: सो फरत, एक्चुअली वर्ल्ड ब्रेन डे इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन हाउ टू कीप आवर ब्रेन हेल्थी, वेल ऑफ कोर्स, एंड प्रिवेंटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। This year's theme, let's focus on that. It's brain health for all ages, no matter what, for all ages, and this is set by World Federation of Neurology.
0: बिल्कुल, और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे बड़ी गलतियां आजकल लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, वो है नींद पूरी ना लेना, स्ट्रेस, और बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना।
1: So I think to prevent neurological disorders, meditation, stuff like yoga, and eating fresh fruits and vegetables every day, that will definitely help you all.
0: बिल्कुल, और बच्चों से मोबाइल तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि ये भी ब्रेन पर बहुत ही बुरा जो है असर डालता है।
1: Leading cause of brain fog actually.
0: क्योंकि हमें ब्रेन को भी आराम देना बेहद जरूरी है, 24 घंटे ये काम करता है, तो अगर आप सोएंगे, रेस्ट लेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तो ब्रेन

0: भी जो है आपका हेल्दी
1: सो
0: रहेगा।
1: लिसनर्स थिंक अबाउट योर ब्रेन,
0: जी आज
1: टाइम ऑफ योर 24 आवर्स,
0: आज से शुरू जो है आप कर दीजिए मेडिटेशन।
1: जी
0: और अब आगे बढ़ते हैं, 1981 की बात कर लेते हैं। आज ही के दिन भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था।
1: इन 1933 एविएटर वाइली पोस्ट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड।
0: 1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू हुई।
1: In 1934, notorious American gangster John Dillinger was shot and killed by federal agents outside Chicago's Biograph Theater.
0: और 2019 में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे की। वो देश के सबसे कम उम्र के रेमन मैक्सेसे पुरस्कार विजेता रहे। संदीप पांडे देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना निर्णय लिया। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की, और इसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यक क्योंकि पक्षधारता के लिए वो काम करने लगे। और आइए अब हम बात कर लेते हैं भारत में संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक मुकेश चंद्र माथुर की।
1: हाउ ट्रू।
0: जी, पेशे से एक इंजीनियर के घर पर पैदा होने वाले मुकेश के अंदर वो सलाहियत थी कि वो एक अच्छे गायक बनकर उभरे, और यही हुआ।
1: So Mukesh's interest in the arts was seen very early. As a child he used to listen in on his sister when the music teacher would come to teach his sister. And as he grew older, he became completely mesmerized by the songs of K.L. Sehgal. He used to spend a lot of time imitating him.
0: बिल्कुल शगुन और निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अदाकारी करने के साथ साथ गाने खुद गाए, और इसके अलावा माशूक का आह अनुराग और दुल्हन में बतौर अभिनेता भी काम किया। केएल सहगल से मुतासिर मुकेश ने अपने शुरुआती दिनों में उन्हीं के अंदाज में गाने गाए। मुकेश का सफर 1941 से शुरू हो गया, और एक गायक के रूप में 1945 में फिल्म पहली नजर में उन्होंने गाना गाया।
1: So well, you were telling that he has worked in other capacities as well, such as an actor, music director, and producer. Well, we know him as a playback singer, of course. And then after he finished his 10th standard, actually, he got a job working for the Delhi Department of Public Works. But even while working, his interest was in arts then also. And he used to experiment with recordings and worked hard to improve his singing. While working as well.
0: तो शगुन, हमने उन्हीं के गानों की एक मेडली तैयार की है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को सुना दे।
1: श्योर। कहीं

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कोनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तिसादी राब्तों में नुमाया तौसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर

जिंदगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जेनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी ताल्लुकात को वसअत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, नीज इख्तरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। स्कोपिया के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है। शिमाली मकदूनिया के ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी और मेयारी हिफ्जान सेहत तक मुसाविना रसाई दस्तियाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तिरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला ओहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाजाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनाकिद होगी। भारतीय बहरिया INS मालवन को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है, जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनाकिद होगी। INS मालवन को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाजों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में पता करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तिजारती निजाम के तई अपने आजम को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तिजारती तंजीम WTO में तिजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तिजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाजा होता है। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तिजारती निज़ाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तिजारती मुआहिदों का एक वसीतर नेटवर्क कायम करके तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नरम रवि पर मबनी गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी के निज़ाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकत दार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने
और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफुज करने का

अहद किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतल्लिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए। इससे पहले दिन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर

0: सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर ही भरोसा करें। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलाईकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए ये हुक्म जारी किया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी संधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरी हरन अमासक्रून की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे, नीज तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोंग जून हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तिसादी राबतों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वजराए सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारोबार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी संधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणीचं ही परभणी केंद्र आहे, श्रोते हो 10 वाजले आहेत, प्रसारित करत आहोत परभणीचे महापौर सय्यद इकबाल सय्यद खाजा यांची आनंद पोहनेरकर यांनी घेतलेली मुलाखत, विशेष मुलाखत आम्ही आता प्रसारित करत आहोत।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ है परभणी नगर निगम के युवा महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा सर। महापौर के रूप में अपने पहले 100 दिनों के कार्यकाल उन्होंने शहर के विकास के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण निर्णय लिए, किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और आने वाले समय में परभणी के विकास को लेकर उनका क्या विजन है, इन्हीं सभी विषयों से आज उनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, महापौर के रूप में पहले 100 दिनों का जो अनुभव है वो आपका कैसा रहा? सर
3: एक्सपीरियंस सर ये बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा कि एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल लाइफ होती है, ये जो महानगर पालिका की लाइफ है हाँ। ये टोटली डिफरेंट है हाँ। और जो मेरा पहला जो सफर था हाँ। पहले मैं स्पोर्ट्स मैन क्रिकेट खेला हूँ और राइफल शूटिंग का मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ और मैं फुटबॉल का स्टेट प्लेयर हूँ, कई सारे मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता हूँ और ये एक अलग लाइफ थी और घर का जो बिजनेस था।

0: उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बिजनेस करते हुए समझो ये एक अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहा, और मेरी फैमिली ने मुझे इसका पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप खेल सकते हैं, मतलब एक अच्छी मतलब कोशिश जो मैं स्पोर्ट्स के प्रति थी, तो कभी फैमिली ने मना नहीं किया कि आपने खेलने को नहीं जाना है। स्पेशली अभी मेरे पिताजी के तो देहांत हो चुका है, हमारे फैमिली के जो हेड है सबसे बड़े हमारे घर के हमारे भाईजान और बड़े भाई है, उन्होंने भी उस लाइन पे हमको काफी सपोर्ट किया और कभी मतलब ऐसा पर्सनली उसको इंटरप्ट नहीं किया, और मेरे खेल के लिए भी वो काफी मुझे प्रेरित करते थे। जैसा एक परभनी में मेरा टीम है सैयद स्पोर्टिंग के नाम से क्रिकेट में, तो वो फैमिली का समझो पूरा 100% सपोर्ट रहा, तो वो लाइफ अलग थी। और ये समझो बिजनेस की साथ में बिजनेस जो घर की बिजनेस की जिम्मेदारियां थी, तो वो भी फैमिली ने कहीं ना कहीं मुझे एज ए एडजस्टमेंट सब तरीके से मुझे एडजस्ट करते रहे। छोटा था, इन बिटवीन था, तो संभाल के फैमिली ने लिया, तो उस वजह से समझो ज्यादा प्रेशर नहीं था। लेकिन आज जब इतनी बड़ी शहर की जिम्मेदारी आई है, तो मैंने अभी जब से मैंने पदभार लिया है और परभनी में हर तरह के रहने वाले धर्म जात समुदाय आज वो सभी मेरे हैं। मेरी ऐसी मानसिकता है और मेरी फैमिली के भी यही मानसिकता है, हम यही मानसिकता वाले लोग हैं, सभी को अपना मानकर और साथ में लेके चलते हैं। बोलने से बेहतर हर किसी ने इसको अनुभव किया है कि जो आज हम सभी के साथ में होते हैं, और आज ये इस मुकाम पे आना कोई छोटी चीज नहीं है। पहली मर्तबा काउंसिल में हम लोग गए और महापौर पद हमको मिला, ये
1: लोगों ने विश्वास भी आप पे डाला, ये पूरा काम कर सकते हैं,
0: विश्वास डाला। जो हमारी फैमिली की छवि है, स्पेशली मेरे भाईजान और मेरे बड़े भाई सैयद अब्दुल कादर, ये दोनों ने जो काम किया था उनके कार्य का फल मुझे मिला है।
1: मेरे ख्याल से 10 साल के ऊपर उनका जो सोशल वर्क है वो लोगों ने देखा है परभनी।
0: हाँ, परभनी में सर आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ जो मेरी फैमिली ने किया है उसका मुझे अभिमान है। और सर कई समय पर जो जहाँ पर शहर में दिक्कत आती थी, या ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, शायद मुझे यहाँ से जाने के बाद घर पे डांट भी खानी पड़े कि जो हमारे परिवार ने जो काम किया है कि वो बंद मुट्ठी वाला काम किया है। कोरोना काल में कई सारी हमने
1: देखा है सर, कोरोना काल में
0: आपने देखा है सर, मगर हमारी फैमिली का कैसा होता था कि किसी को कोई चीज बतानी नहीं है, वो भगवान को राजी करने के लिए काम किए जाते थे और बंद मुट्ठी काम किए जाते थे। और कहीं पर भी सर हमारा रिकॉर्ड पे फोटो नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटी से इंश्योर कराता हूँ। और आज मुझे ये चीजों को सारी चीजें बताना पड़ती है, ये मुझे भी बहुत हार्ड जाता है, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ कि जहाँ हमने सारे काम जो किए थे कि वो पूरे काम पूरे बंद मुट्ठी थे, लेकिन आज जो पद पर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, मेरे शहर के लोगों को मुझे बताना जरूरी है। इसलिए सर मेरे जो कार्य का 5-10% होता है मैं लोगों के सामने लाता हूँ, वही इतना एक पार्ट है सर।
1: बराबर। और इसमें आगे है कि इन 100 दिनों में जो आपने काम किए है, उन कामों में 3 सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर आप देखते हैं तो कौन सी है वो?
0: सर जब मैंने पदभार नहीं लिया था हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, स्किन केयर हॉस्पिटल के पास में एक पुल है, पुराना पुल टूटा हुआ, नीरज होटल के पास में, जोगढ़ हॉस्पिटल के नियर बाय में है सर, तो वहाँ का पुल टूटा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे शब्द दिए थे अगर नगर सेवक बन जाऊं तो सबसे पहला काम मैं वहीं का करूँ।
1: बराबर।
0: और वो काम सर बहुत ज्यादा बड़ा है, बजट भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बजट है, दिखने में छोटा था लेकिन सर उसकी जो बुनियादी ढांचा था नीचे काफी ज्यादा था, अंडरग्राउंड में जितना ऊपर में था उससे कई ज्यादा डबल वो डाउन साइड में था। तो उसमें एक कपल थे सर, सीनियर कपल थे, और उसमें गलती से सर वो लोग गिर गए थे पुल टूटने की वजह से, तो वो वीडियो हमारे फ्रेंड सुदर्शन काड़े ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, सर अपने को यहाँ आप जब भी नगर सेवक बनेंगे तो पहला काम आपको यहाँ करना पड़ेगा।
1: बराबर।
0: और सर मैंने काम आज देखेंगे तो कंप्लीट मेरा काम हो चुका है सर, ऐसे कई सारे काम है सर, 3 काम नहीं, मैं आपको मैक्सिमम काम मेरे मैं आपको बतवा सकता हूँ कि सर एक जन्म मृत्यु का विषय था। जैसे मैंने पदभार लिया तो शिवाजी महाराज की जयंती थी, उसके रिगार्डिंग हम लोग वो प्रीमाइसिस में जाते थे, तो महाराज के पुतला परिसर में जाते थे, तो कई कर्मचारी ऐसे सीनियर कर्मचारी थे सर कि वो एज सिमिलर टू आपके दादाजी के एज में होंगे,
1: बराबर
0: वो 60 के एज में चल रहे थे, तो सर वो सही से चल नहीं पाते थे और उनके पीछे काम का बोझ, और उस समय धूप भी बहुत ज्यादा पड़ती थी और उतने टफ टाइम में ये लोग सही से चल नहीं पाते, फिजिकली थोड़ी डिसेबिलिटी थी और उस तरह के से वो काम करते थे। मैंने उनको फाइंड आउट किया और एक मैंने हमारे जो पीए है रमेश चौहान साहब से मैंने बात किया कि सर ये इतने सीनियर हो चुके हैं आज वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्या अपन इनके फैमिली से किसी को ले सकते हैं क्या?

0: मतलब मेरा सेकंड डे ही था सर,
1: यस
0: ऑलमोस्ट
1: यस
0: सेकंड थर्ड डे था,
1: बराबर। हाँ
0: तो उसके रिगार्डिंग मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है,
1: हो
0: प्रीवियस डेज में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं
1: नहीं
0: थी,
1: थी बराबर।
0: तो उसमें से कई सारी चीज़ें बाहर आई। उसमें उन्होंने बताया कि लार्ड कमीशन के थ्रू
1: कमीशन
0: अपन वो लोगों के फैमिली में से किसी भी मेंबर को अपन
1: ले
0: लेकर
1: सकते
0: इनको
1: हैं,
0: अपन भेज देते हैं।
1: बराबर।
0: तो हमने फिर उनको बोला कि मैडम आप है ना काम मत करिए,
1: हो
0: आपके फैमिली से पहले मैं हूँ, जब तक
1: हो
0: आपके फैमिली से कोई मेंबर को हम ले लेते हैं,
1: बराबर।
0: आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि किसी आपको फिर हम छुट्टी देंगे, पहले उनको
1: हो
0: हम जॉब पे लेंगे,
1: बराबर
0: आफ्टर दैट आपको हम रिलीव करेंगे।
1: बराबर।
0: आपकी मानसिकता ये ना हो कि कहीं हमारी
1: हमको निकाल
0: फैमिली
1: दिए, बच्चों को भी नहीं
0: बच्चों
1: लिए।
0: बच्चों को भी निकाल दिए, ये मानसिकता का आदमी भी नहीं हूँ। और सर मैं आज गर्व से कहता हूँ, ऑलमोस्ट जब से मैंने पदभार लिया हूँ सर, पदभार लेने के बाद से कई सारी पदोन्नतियाँ रुक गई थी सर, जो दस दस सालों से लोगों को पदोन्नति नहीं मिली थी,
1: हाँ सर,
0: मैंने वो पदोन्नति देने का काम किया है। और उनके साथ में जो फैमिली मेम्बर्स थे जो लाड पागे में, मैंने
1: हो
0: उनको जो सीनियर थे उनको घर पे भिजा कर उनके फैमिली से कई मेम्बर को लिया हूँ। और जो सर अनुकंपा का विषय है,
1: हो
0: अभी ये इन प्रोसेस है, 15 लोग सर आज अनुकंपा के लिए अपने ट्राई कर रहे हैं कि उनके फैमिली ने सर्विस देते देते वहाँ से उनकी जान गई है।
1: यस यस
0: कई सारे लोग हैं ऐसे कि उनकी
1: हो
0: जान गई है।
1: हाँ
0: तो विषय में सर मैंने एक पर्टिकुलर जीआर भी निकाला है
1: अच्छी
0: कि
1: बात सर।
0: मालूमात के लिए, कि कई किसी ऑफिसर ने बोला कि सर अपन 3 आपत्ति होने के बावजूद इनको नहीं दे सकते, तो आपत्ति की तो उसका जीआर निकाला, तो उसमें कोई प्रावधान नहीं है, आप दे सकते हैं। और इसमें सर दो मेरे मुख्य रीज़न है कि आरोग्य में मैंने इतना ध्यान क्यों दिया। एक तो सर जो आज शहर का आरोग्य सेंटर है अपने परभनी में, ऑलमोस्ट 26 आरोग्य सेंटर है सर।
1: परभनी में
0: हाँ, और सर गवर्नमेंट से इनको फुल फील पैसा आता है,
1: अच्छी बात।
0: और मतलब ये फील्ड को गवर्नमेंट ने किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, फुल फ्लेश में पैसा आता है। और कर्मचारी जो अपॉइंट नियुक्त किए गए हैं उनका पैसा भी गवर्नमेंट से आता है सर, NULM के अंदर में, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। कॉरपोरेशन से इनको कोई पैसा नहीं जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कॉरपोरेशन उनको सपोर्ट करती है, अदरवाइज इनका एक सेपरेट है कि पैसा उनको आता है
1: गवर्नमेंट
0: और
1: से
0: उनको गवर्नमेंट से आता है, कोई डिले नहीं। और गवर्नमेंट भी मतलब ये काम के अंदर किधर से भी ढिलाई नहीं है सर, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या फिर कोई अन्य
1: कौन
0: गवर्नमेंट
1: सी
0: हो,
1: भी गवर्नमेंट हो।
0: उनको मतलब ये आरोग्य को सभी गवर्नमेंट ने एक फुल प्रायोरिटी पे रखा है। तो ये विषय में कई सारी कमियां थी सर। महिलाएं जहाँ हॉस्पिटल में जाती थी आरोग्य केंद्र में, तो महिलाओं के लिए सर वहाँ शौचालय नहीं था। महिलाओं को शौचालय नहीं होना, जो वैद्यकीय अधिकारी है उनको अगर शौचालय नहीं है सर, ये सबसे बड़ी बहुत
1: बराबर।
0: बड़ी समस्या है।
1: हाँ दिन
0: तो
1: रात वो
0: सर
1: काम करते
0: इमीडिएट
1: हैं।
0: सर ऐसे कई सारे अलग अलग अलग तरह के जो इश्यूज थे, हमने उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करके सर हमने फाइंड आउट किया कि सर एक साकलाबाद प्लॉट परिसर में जो हमारा आरोग्य केंद्र था वहाँ रेलवे गेट है, रेलवे गेट होने के बावजूद अगर किसी महिला को वॉशरूम की अगर अर्जेंसी आती है तो फिर वो जाएँ कहाँ पर?
1: बराबर।
0: और वो जो एरिया है सर सबसे हार्ड कोर एरिया है। और मैं जब गया था वो प्रीमाइसेस में, मैंने फाइंड आउट किया कि वहाँ दारू भी बिकती है, वो
1: अच्छा।
0: न्यूज़ में भी प्रकाशित हुई थी सारी चीज़ें, सबको पब्लिकली भी पता है कि हमने जाके वो चीज़ों को फाइंड आउट किया है और उसको हमने बंद भी कर किया है सर। वहाँ पे जो मुंडा पिया है कासले साहब, वहाँ जाके मैंने उसकी कंप्लेन भी करवाई। और सर उसके बाजू में कुछ डिस्टेंस पे हमारा प्राथमिक स्कूल है,
1: हाँ
0: और
1: बच्चों
0: स्कूल के अंदर हमने जाके देखा तो सर वहाँ पे बुरे जानवर को बांध रखा है। ये सारी लेवल की सर हमने सारी चीज़ों को देखा है। और ये सर हर चीज़ पे तवज्जो देना और उसको फाइंड आउट करके उसको कैसा अपन वहाँ से बाहर निकालें, बहुत हार्ड टास्क है सर।
1: बराबर।
0: और तीसरी जो बात है सर, अभी जो आरोग्य के विषय में जो मेरा एक इंटेंशन है कि सर अपन, मैं तो शहर का महापौर होने के बावजूद मैं सिर्फ शहर के लोगों को सुविधा दे सकता हूँ, और इस पे सर जब अगर अपना आरोग्य सेंटर प्रॉपरली वर्क करेंगे, अगर इनकी ज़रूरतों को अपन ने पूरा किया, तो एक अपना आरोग्य सुधरेगा शहर का, और सेकेंडली सर जो ग्रामीण से आने वाले रुग्ण हैं वो डायरेक्टली अप्रोच होते हैं सिविल हॉस्पिटल,
1: सिविल हॉस्पिटल।
0: और इमरजेंसी केसेस के रिगार्डिंग भी कोई आएगा वो आता है सिविल हॉस्पिटल। तो मतलब सर एक, और सिविल हॉस्पिटल में भी सर डॉक्टर काम करते हैं, नहीं करते ऐसा विषय नहीं, लेकिन सर वहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा ये है कि स्टाफ जितना होना चाहिए उतना स्टाफ नहीं है वहाँ पर, वो दिक्कत है। और परभनी में कई सारे डॉक्टर्स अपॉइंट तो होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा स्पैन यहाँ पर निकालते फिर यहाँ से चले जाते हैं,
1: बराबर
0: बदली करा कर
1: बदली।
0: चले जाते। तो एक तकलीफ होती थी मन में, यार अपन इसको किधर से दूर करेंगे। तो मैंने सोचा कि अपन अपने जो 26 आरोग्य केंद्र हैं पहले उनको हाथ में ले लेते हैं,
1: बराबर।
0: अगर इसको अपन नीट एंड क्लीन वे से अगर काम

0: जो सिविल पे आने वाला जो लोड है
1: हाँ
0: वो उसका कहीं ना कहीं उसका रेशियो डाउन में आएगा,
1: बराबर।
0: ये मेरा सोच थी। और सेकेंडली सर, ग्रामीण के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो कैसे एकदम सिंपल रहते हैं, जो
1: हाँ
0: मन में है
1: वो बात कर
0: वही
1: लेते,
0: जबान पे बात रहती है।
1: बराबर।
0: मतलब ऐसा शहर की भी सभी लोग अच्छे हैं ऐसा नहीं बोलता हूँ
1: हाँ
0: कि, लेकिन जो उनके प्रति मेरा एक
1: मासूमियत
0: अलग,
1: जो
0: हाँ
1: बोलते हैं,
0: मासूमियत, मेरी एक भावना उनके प्रति थोड़ी अलग
1: हाँ
0: है।
1: ज़्यादा।
0: और मतलब क्यों ये है कि इसकी भी मैं वजह बता देता हूँ, जो शहर में रहने वाला लोग आदमी है
1: हाँ
0: तो वो एजुकेटेड है, उसको सारी चीज़ों की समझ है, उसके
1: जानकारी है उस,
0: अधिकार वो
1: हाँ
0: कहाँ से ले सकता है, उसको पता है कि अपने अधिकार कहाँ से लेना चाहिए। तो ग्रामीण के लोग उतने, उनको समझ नहीं होती है।
1: बराबर
0: तो ये
1: बराबर।
0: मेरी सोच है कि भाई जो ग्रामीण में रहने वाली वर्ग है, मैं शहर में महापौर होते हुए भी उनकी हेल्प किस तरह करूँ,
1: बराबर।
0: उनका अधिकार उनको। सर अभी कई सारे रुग्ण ऐसे आते हैं सिविल हॉस्पिटल में कि उन्होंने खुद की बीमारी के रिगार्डिंग भी नहीं प्रॉपरली बता पाएंगे कि
1: बराबर।
0: मुझे ये हुआ है, डायग्नोसिस भी नहीं होता है।
1: बराबर।
0: तो मेरी इच्छा थी कि सर डॉक्टर को थोड़ी स्पेस मिले, उस स्पेस के साथ साथ जो बाहर से आने वाले रुग्ण हैं उनकी भी जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी भी नीड पूरी हो, और डॉक्टर को भी साथ में स्पेस मिले। आज सर डॉक्टर भी काम करते हैं, लेकिन क्या होता है सर, आज परभणी शहर में अगर आप जाएंगे तो 4 बेड के लिए एटलीस्ट 2 तो भी नर्सेस चाहिए, 4 से 6 बेड के लिए।
1: बराबर।
0: सर आज एक ही होती है, फिर अल्टरनेट स्टाफ के लिए उसमें से किसी को मैनेज करना पड़ता है, फिर पब्लिक का रोष होता है कि भाई सरकारी हॉस्पिटल है आप लोग फैसिलिटीज क्यों नहीं देते हैं। सभी लोगों को इसकी इंटरनल क्राइटेरिया क्या है ये पता नहीं होता
1: पता नहीं
0: है।
1: होती, बराबर।
0: CS भी काम करते हैं, लेकिन उनके भी CS की भी एक अपने पर्सनल लिमिटेशन है, वो भी
1: बराबर
0: लिमिटेशन के बाहर जाके काम नहीं
1: नहीं
0: करते
1: कर
0: हैं।
1: सकते, नहीं कर सकते।
0: अभी वुमेन्स हॉस्पिटल है सर, एक रिसेंटली एक परसों का ही एक हादसा हुआ, हादसा नहीं बोलेंगे, एक चीज़ घटना घटित हुई
1: हाँ
0: कि अपने पास से एक कुमार समाज की जो गणेश जी की जो मूर्तियां बनाते हैं, शिल्पकार जिसे
1: हाँ
0: कहा जाता है,
1: हो हो
0: वो एक्चुअली थे कोल्हापुर में,
1: मच्छी बात।
0: वो कोल्हापुर में थे और उन्होंने मुझे कॉल किया, सर एक थोड़ा इमरजेंसी विषय है, बोले सर मेरा क्या आप हेल्प कर पाएंगे क्या। बोला आप बोलिए, अगर मेरे बस में है तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा।
1: बराबर।
0: उन्होंने बताया सर मेरी वाइफ वुमेन्स हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे माता जी को उतनी समझ नहीं है कि मेरी वाइफ को नांदेड़ ले जाएं, जो प्रेग्नेंट महिला थी उनका जो बीपी था वो अपर साइड था, अपर साइड होने की वजह से डॉक्टर भी थोड़ा प्रिकॉशनरी बोलते हैं कि सर आप इनको वहाँ ले जाना पड़ेगा,
1: नांदेड़
0: क्योंकि
1: रेफर।
0: अपने पास इतना तामझाम नहीं है
1: हाँ
0: कि जो अपना लिमिटेशन में काम हो रहा है,
1: हो
0: नहीं करके नहीं बोल सकते लेकिन हो रहा है, इसको डिनाई नहीं कर सकते सर,
1: बराबर।
0: लेकिन कुछ ना कुछ कमी है अपने पास में। आज भी आवश्यकताएं हैं कि जो शहर को ज़रूरी है आरोग्य में, वो चीज़ें नहीं होने की वजह से इनको भी लगता है कि अगर कल इनको कुछ हो जाए तो इनके
1: हाँ
0: फैमिली का पूरा जवाबदारी अपनी हो जाएंगी कि अपन ने कुछ गलत कर दिया इसलिए ऐसा हुआ है।
1: बराबर
0: तो
1: बराबर।
0: ये जो भावना है सर डॉक्टर के मन में रहती है, तो ये डर भी है और उनको जो आज जो सुविधाओं से जो वंचित है तो उस वजह से उनके मन में ये चीज़ें हैं कि डर भी है। तो ये चीज़ों के रिगार्डिंग वो फ़ोन आया, उसने बोला सर वाइफ को हम पर्सनली, मेरी तो कंडीशन नहीं है कि मैं मेरी फैमिली को भेज सकूँ और मैं इधर आके, और मम्मी उतने नॉलेजेबल नहीं है। तो मैंने वहाँ के वुमेन्स हॉस्पिटल के हेड है वर्मा जी,
1: अच्छी बात।
0: वर्मा जी को मैंने कॉल किया और वर्मा जी ने तुरंत कॉल को रिसीव भी किया और मैंने सारी उनको बात बताई, और वो जिसने कॉल किया था उसको मैंने बोला कि आप लाइन पर ही रुकिए, आपका जो भी कंसर्न है आप वर्मा जी को बोल दीजिए,
1: बराबर
0: मैं साथ
1: बराबर।
0: में हूँ आपके। तो वर्मा जी को उसने सारी चीज़ों की बताई, वास्तुस्थिति जो प्रेजेंट सिचुएशन थी सारी सिचुएशन उन्होंने बताई। तो इमीडिएट सर 5 मिनट के बाद उस महिला का सीजर हुआ और मैं पर्सनली जाके मिल के आया हूँ,
1: क्या
0: बच्चा
1: बात,
0: सुखरूप है, माँ एकदम ज़बरदस्त है
1: क्या बात
0: और फैमिली एकदम सुखी सुखहाल है। तो ये चीज़ें सर अगर आपके काम करने से, मतलब आप जाके बोलेंगे किसी के, अगर आपके बोलने से होती है, तो
1: हो।
0: मेरा ऐसे ही एक मानसिकता है अगर किसी का काम अगर होता है आपके बोलने से होता है तो डेफिनेटली आपने बोलना चाहिए।
1: बराबर।
0: और पदभार जब से लिया हूँ सर कोई भी दिन मेरा एक छुट्टी नहीं है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं सर, मेरा विजिटर्स रजिस्टर है उस पर आप देख सकते हैं कि जिस दिन मैं अगर वहाँ महापालिका में नहीं हूँ तो आप फाइंड आउट करेंगे कि मैं कहीं ना कहीं महापालिका ही काम से
1: काम से बाहर गया है।
0: मुंबई पुणे संभाजीनगर जहाँ पर भी मुझे जाना पड़ा महापालिका के काम से ही गया हूँ, और
1: अच्छी
0: पर्सनल
1: बात,
0: सर इसमें मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है,
1: अच्छी
0: इवन
1: बात।
0: सैटरडे संडे भी मैं आता हूँ महापालिका।
1: सर अभी ये काम के बारे में आपने बताया, और यह है कि शहर स्वच्छ, कचरा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए क्या कदम आपने उठाए सर अभी?
0: सर जिस दिन मैंने पदभार लिया सबसे बड़ा प्रश्न आपने जो आज मुझे पूछा है अभी, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बड़ा था, कचरे को कैसा मतलब एक नियंत्रण में लाए और
1: हाँ
0: उसको कैसे कैसा बाहर करें।
1: हाँ,
0: जो ऑन गोइंग

0: था, मतलब वो एक मेरे जैसा कार्यकाल के लास्ट फेज में उनका टेंडर चल रहा था, मतलब वो जो कंपनी को टेंडर दिया गया था वो कंपनी के ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए महानगर पालिका पे पेंडिंग थे। फिर भी सर मैंने उनको पदभार लिया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपकी जो भी पेंडेंसी है हम टाइम टू टाइम आपकी पेंडेंसी को क्लियर करेंगे।
1: अच्छी बात।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज शहर की हालात है, कचरा जैसा जो गाड़ियां मतलब एक कम लेवल पे थी, अभी आज सर हमने शहर में जाके जन जागृति की है, हर एरिया में जाके जन जागृति की कि जो नगर सेवक है हमने उनके माध्यम से की। पर्सनली मैंने भी एक सर अपना कॉर्नर से लेकर अपने अंबेडकर साहब के पुतले परिसर तक, सर महानगर पालिका तक हमने एक जन जागृति रैली की जिसमें प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, और लोगों को आह्वान किया उसके रिगार्डिंग, उनको अवगत कराया कि आप जो कचरा डालते हैं इससे होने वाली अड़चन जो भी है आपको ही निर्माण होने
1: निर्माण
0: वाली,
1: हो रही।
0: अगर आप आज कचरा डालेंगे कोई दुकान का आप झाड़ के साफ सफाई करके कचरा बाहर डालेंगे प्लास्टिक वेस्ट, थोड़ी दूर जाकर वो नाली में जाने वाला है, और जब पानी आता है तो कहीं ना कहीं उसको ब्लॉक क्रिएट होता है। तो
1: वो पानी रास्ते पे आ जाता है।
0: सर आपको मैं सारी, आपका तो रेडियो है लेकिन आपको मैं जो एविडेंसेस मेरे पास है फोटोज वगैरह डेली, सर हमारी महानगर पालिका की जो सफाई कामगार है कर्मचारी है सर इतना बढ़िया काम करते हैं, अपेक्षा के बाहर है। आज महापालिका के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं तो ऑन रिकॉर्ड सर नियर अबाउट वो मोर देन 4.5 लाख है ऑन रिकॉर्ड, अभी डे बाय डे रिकॉर्ड इंक्रीज हो रहे हैं उसके माध्यम से, और अनऑफिशियल रिकॉर्ड जो बोलता हूँ कि जो बच्चे अभी रिकॉर्ड पे नहीं आए हैं नए जो आने वाले हैं, और कई सारे फैमिलीज रिकॉर्ड पे नहीं है,
1: नहीं
0: छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो सर इसका फिगर और उससे आगे भी जा सकता है।
1: बराबर।
0: और सर 150 लोग, उतने बड़े फिगर को संभालना 150 लोगों की जिम्मेदारी, और किस तरह से सर वो काम करते हैं सर, मैं तो बोलता हूँ महानगर पालिका के जो साफ सफाई कर्मचारी हकीकत में सर वो शहर के रियल हीरो है सर।
1: रियल हीरो।
0: सर अभी बड़े जो नाले की साफ सफाई के रिगार्डिंग मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज तक सिर्फ सर मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ऑन रिकॉर्ड सिर्फ पेपर पे काम होता था, मैंने सर पर्सनली जाके हर एरिया में जो मेन मेन एरियाज के जो प्रॉब्लम थे कि बारिश के पानी के वजह से सर अपनी फैमिली को छोड़ के हुए एक फंक्शन हॉल में सबके बीच में महिलाओं को रहना पड़ता था, ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है सर, कि अगर अपने जो कार्य क्षमता होने के बावजूद अगर अपन काम नहीं करेंगे
1: कर सकते।
0: और जो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी उनको उस सुविधा से वंचित रखकर सर अपन ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, कि
1: अनर्थ किया।
0: जो सबको इन कॉमन सर सबको महिलाओं को सभी को बच्चों को गैदरिंग में रहना पड़ा, तो वो चीज़ें मुझे खटकती थी, तो उसके बिहाफ पे सर हमने क्या किया, एक प्लान एग्जीक्यूट किया
1: अच्छी
0: कि
1: बात।
0: जो बैक वाटर कहाँ से आता है वो, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने फाइंड आउट किया, ASI CSI
1: अच्छी
0: कई
1: बात।
0: सारी जो हमारी कर्मचारियों की टीम है, जैसे कि एक हमारे साफ सफाई कर्मचारी लक्ष्मण जोगदन, करण गायकवाड़ और रत्न पारके, ऐसे कई कर्मचारी हैं, नाम गिनाने बैठू तो कई सारे, अप्पा देशमाने, तो ये लोगों ने सबने मुझे सपोर्ट किया, श्रीकांत खुरा, कि सर ऐसा ऐसा अगर आप काम करेंगे
1: अच्छी
0: तो
1: बात।
0: डेफिनेटली सर ये पॉजिटिव वे में जाएंगा, और जो बैकलॉग आता था पानी का दरगाह रोड कवड़गांव गेट से लेकर पिंगलगढ़ नाले तक, सर वो नाले नहीं नालियां बन गई थी, और उसका हमने रुंदीकरण और उसकी जो डेप्थ है उसको बढ़ाकर आज जो जो स्थिति में है वो पहले स्थिति में नहीं थी सर, नालों का नालियां के इसमें रूपांतर हो गया था, उसको निकाल दिया गया, और हमको लगता है कि आगे उसमें कोई अड़चन नहीं आने वाली, पानी कितना भी बड़ा बारिश हो, एक उम्मीद है कि हमने जिस तरीके से काम किया है कि उस उम्मीद की बुनियाद पे हम बोल सकते हैं कि आगे इन फ्यूचर पानी नहीं आएगा फिर, मगर आखिर तो ऊपर वाले
1: ऊपर
0: की उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर
1: जितना
0: सकता,
1: हो सके
0: हाँ
1: आपन बना
0: जो
1: दिया।
0: जो
1: अच्छा
0: हमारे बस में है जो हमारी सोच है
1: हाँ, तो
0: हमने
1: आपने
0: हमारी
1: बना
0: सोच के मुताबिक वो काम तो किया,
1: बराबर।
0: बाकी ऊपर वाले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
1: स्वच्छ शहर, परभणी शहर, प्लास्टिक मुक्ति के बारे में आपने बताया, लेकिन पानी की आपूर्ति अंडरग्राउंड ड्रेनेज होने वाला है, तो
0: सर
1: इसके बारे में आपका
0: अभी
1: क्या
0: सर
1: नियोजन
0: अभी
1: है?
0: स्टैंडिंग में अभी एक निर्णय लिया गया तुरंत एक दिन पहले,
1: हाँ सर,
0: अभी वो विषय थोड़ा प्रोसेस में है,
1: अच्छी बात।
0: उसके रिगार्डिंग मेरे पास में अभी पूरी तरीके से कोई क्लैरिटी आई नहीं है,
1: हाँ
0: और जब उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी आएंगी तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग बोलूँगा।
1: अच्छी
0: प्रीवियस
1: बात,
0: में जो हमने उसको मान्यता दी थी
1: अच्छी बात।
0: कल की जो मीटिंग से पहले, कि ऑलमोस्ट वो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सॉरी अंडरग्राउंड ड्रेनेज
1: ड्रेनेज, हाँ
0: प्लस अपना समांतर पानी पुरवठा
1: समांतर
0: योजना, ये
1: हो,
0: दोनों पैरेलली आई थी,
1: हाँ
0: 450 करोड़ अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए सैंक्शन
1: हो
0: था, और 250 करोड़ के करीब करीब ये अपने समांतर पानी पुरवठा योजना के इसके लिए सैंक्शन था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि जो स्टैंडिंग में जो निर्णय

0: दिए गए
1: हो।
0: स्टैंडिंग कमेटी के एक अपने अधिकार होते हैं, उसके अधिकार के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया, उसकी क्लैरिटी मेरे पास में आई नहीं, कुछ समय में आ जाएंगी तो उसके बारे में मैं आपको 100% मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। और सर उसको रिवाइज करने के लिए भेजा गया, मतलब जो अमाउंट है बढ़ाने के लिए बोला गया। वो प्रस्ताव पहले के थे, कई साल पहले के प्रस्ताव थे, उसका वैल्यूएशन कंपैरिजन आज के पीरियड में बहुत कम था, मूल्यांकन करके उसको फिर रिवाइज करके अप्रूवल के लिए भेजा है। देखते हैं, अपेक्षा है कि वो प्रबंधनीकरों के लिए अगर आ जाता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा।
1: अच्छी बात सर, आर्थिक प्रश्न जो है तो वो भी बहुत जरूरी है, तो इन दौरान किन आर्थिक या प्रशासनिक चुनौतियां आपके सामने आई?
0: जो महापालिका की सर पुराना जो बैकलॉग है, अगर आप देखेंगे पुराना बैकलॉग तो आप फाइंड आउट करेंगे कि सर बहुत बैकलॉग तो इतना डेंजरस है, सभी ने महापालिका को एंजॉय किया है। इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगा, मैं सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ,
1: बराबर,
0: मैं किसी को फिंगर पॉइंट आउट करना, फिर उनके रिएक्शंस आना, फिर उसको उत्तर देना, ये मैं ये ऐसी मानसिकता वाला आदमी नहीं हूँ सर। मेरा विजन है विकास, और एक दिन हर दिन सर एक एक कदम मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सर हमको ऊपर से जो फंड आना चाहिए था, जो अपेक्षित था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, वो अभी तक शून्य है, शून्य है। लेकिन सर इसमें से भी हमने हमारे लोगों का समाधान निकालना शुरू कर दिया है, और कई सारे काम सर पैसे से नहीं किया जा सकता। कई काम ऐसे होते हैं कि सर आपका जो प्रशासन को सीधा करके भी काम किया जा सकता है,
1: बराबर,
0: लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलने चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, वो फैसिलिटीज भी अगर उनको सही से अगर नहीं मिलती है, और वो हम उनको प्रोवाइड करने का एक समाधान कारक वे ऑफ मेथड निकाल के देते, ये भी सर बहुत बड़ा काम है।
1: अच्छी बात।
0: और डेली मेरे पास ऑफिस में विजिटर्स आते हैं सर, आप मेरा विजिटर रजिस्टर देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लोग अपने क्या क्या समस्या लेकर आते हैं, और विद इन द डॉट टाइम सर उनका सोल्यूशन मिलता है,
1: हो जाता है।
0: 8-8 सालों से सर कई सारी समस्याएं थी, पेंडेंसी थी, वो लोगों की आज कंप्लीट हो गई है सर, मतलब किसी को अपने काम के लिए रुकना नहीं पड़ता है, और आते हैं सर खुशी खुशी आते, बहने माए खुश होके जाती है, और सर दुआएं
1: देके जाती है,
0: और आदमी ये दुआएं लाइफ लॉन्ग लेके चलती है सर। दुआएं इंसान के लाइफ में कब किसी की दुआ कब लग जाएंगी तो आपको उसका अंदाजा नहीं है।
1: बराबर सर, ये आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रशासन चल रहा है, स्मार्ट जो टेक्निक है वो दौरान चल रहा है, तो स्मार्ट सिटी, डिजिटल सेवाएं, ई गवर्नेंस, इनके बारे में कोई अपना
0: सर अभी
1: प्रगति पर चालू है?
0: स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग एक बात बताता हूँ, जैसे कि सर अभी हमारी 80 टाइप की ऑनलाइन सुविधाएं हैं, ये हमने फैसिलिटी पहले जब जीबी हुई जनरल बॉडी मीटिंग में हमने इसको परमिशन दिया, और ये आज इम्प्लीमेंट में है कि आप जन्म मृत्यु जो एजुकेटेड आदमी है तो साइट पे महापालिका के साइट पे जाकर भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी वहां से भी वो प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही सर अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो सेवाएं हैं, जैसे जो आपके टैक्सेस है, पानी का टैक्स, पानी पट्टी, घर पट्टी, और कई सारे ऐसे स्कीम्स है कि जो हमने उसको ऑनलाइन कर रखा है, तो अगर महानगर पालिका के वेबसाइट पे जाएंगे तो 80 से ज्यादा सर ऐसी एजेंसीज भी है इसमें, और जो बेनिफिट्स है वो वहाँ से वो ले सकते हैं। जो जन्म मृत्यु में सर एक स्पेशल सबसे ज्यादा जो विषय
1: अहम विषय
0: था कि मैं आपको बोलते बोलते रह गया, ये इसके डिजिट आपकी जो विषय में इसका आंसर है। मैं महाराज के परिसर में था जब साफ सफाई का चल रहा था शिवाजी महाराज का, तो एक विषय मेरे वहां से एक ध्यान में आया कि जो जन्म मृत्यु पे आज हो रहा है कि वहां पर सर पूरे दलाल हो गए थे। अगर आप अगर जाएंगे तो कर्मचारी क्या करते थे सर, सिंगल स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते थे, आपको बोलते थे वो मिस्टेक हो गया है, आप घर पे जाने के बाद आप भी चेक करते थे तुरंत, इमीडिएट आप नहीं चेक करते थे। क्यों नहीं करते थे? जब तक आपको कहीं सरकारी जगह पे वो देना नहीं है, फिर अगर आप देखते अरे यार इसमें तो मिस्टेक है, फिर वापस आप जाते लाइन में ठहरते, फिर वो लाइन में ठहरने के बाद आपको बोलते बोला जाता था 8 दिन बाद आइए। 8 दिन सर, उनके 8 दिन मान लो लगभग 6 महीने से कम नहीं होते थे। ये पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, मैंने इस एक्सपीरियंस को फील किया था, और सबसे पहला काम वही किया,
1: स्टिंग ऑपरेशन आपने किया मेरे ख्याल से, वो बहुत
0: नहीं सर, अब जैसा मैं न्यूली था और मुझे पता था कि अगर कोई मुझे पहचान लेगा तो मुझे अच्छे से प्रेजेंट करेगा, सर हम ये करते हम वो करते हमने ऐसा किया हमने वैसा किया, तो मैंने क्या करा अपनी आइडेंटिटी को छुपा के जाने की वजह ये थी कि वो मुझे आइडेंटिफाई ना कर ले। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये कैसा होगा, तो उनकी जो बोलने की ट्यूनिंग थी वो इम्प्रॉपर थी, प्रॉपर भी नहीं थी, और बात करने का सर वहाँ पे अगर मान लो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएंगे तो अपने आप को आप क्या करेंगे, चोर महसूस करेंगे, कि मैंने कुछ गलती करके आया हूँ क्या।

0: ना, मतलब उन्होंने डोमिनेट करते थे पब्लिक को, चलो आपको देंगे तो आएंगे, मोनोपोली जिसे कहा जाता है, मन मर्जी का कारोबार, जब देंगे तभी देना पड़ेगा, और सर उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो इस वजह से सर उनको भी एक शक्ति मिल गई थी कि पैसा भी मिलेगा, मनमाना कारोबार कीजिए,
1: कार्रवाई भी नहीं होगी,
0: कार्रवाई भी नहीं होगी, मतलब आपको कोई तरीके से नहीं। जब से मैंने उसको हाथ पे लिया सर, तो मैंने वहाँ पे 4 कंप्यूटर्स दिए और कई सारे प्रिंटर्स दिए कि उसको डिजिटल रूप से लोगों को उसकी सुविधाएं मिलती रहे। तो उसमें एक बेनिफिट ये मिला कि हम जो बैकलॉग था वो कंप्लीट होते होते आ गया। उसमें फिर और एक सडन इंसिडेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया, सिंगल लॉगिन सिंगल ओटीपी कर दिया। जो हमने सिस्टम दिए थे अब तो सारे नाकारा हो गए। तो ये वजह है सर कि जो जन्म मृत्यु पे जो प्रॉब्लम आज भी प्रेजेंट है, इसका मुख्य रीजन यही है,
1: ओटीपी का,
0: ओटीपी सिंगल ओटीपी सिंगल लॉगिन
1: सिंगल लॉगिन।
0: और आज मैं आने से पहले सर मेरी बातचीत हुई वहाँ के कर्मचारियों से, और कमिश्नर साहब ने भी उनको बोला है कि 4 सिस्टम एक्टिव होना चाहिए और अपेक्षा है कि कुछ कम समय में ही सर वो 4 सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे।
1: अच्छी बात सर, परभनी को स्वच्छ सुंदर और टिकाऊ जैसे सस्टेनेबल शहर बनाना है, तो आपकी दीर्घकालीन जो है सर, योजना अभी, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? समय बहुत कम है।
0: नहीं, समय तो बहुत डेफिनेटली कम है सर,
1: तो भी वो समय ध्यान दे रखे,
0: एक दिन बीता है ना तो सर हमको लगता है यार आज अपन ने क्या किया, तो शाम में हम सर एनालाइज करते हैं।
1: अच्छी बात,
0: आज मैंने क्या किया और अपने को क्या क्या करना था। मैंने एक बुक मेंटेन की है कि मैंने आज जिसको किसको क्या काम बोला था और वो काम कहाँ तक के हुए। तो और जैसा आपका सवाल है कि सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए सर, जो पहले प्रीवियस में घंटा गाड़ियां नहीं थी, घंटा गाड़ियां नहीं थी, आज घंटा गाड़ियां शहर में हो रही है, आ रही है, हर जगह आ रही है। अभी सब लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पहले की कंडीशन और आज की कंडीशन में डिफरेंस है। शायद आज भी कुछ ना कुछ कमी हो सकती है कि वो कमी और आने वाले दिनों में पूरी हो जाए। लेकिन इसमें हमारे शहरवासियों से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रथम नागरिक के नाते कि अपने जो शहरवासी है कि गंदगी जैसा घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ओपन एरियाज में जहाँ पे आज कचरा कुंडी का कोई प्रावधान नहीं है वहाँ कचरा फेंकना नहीं चाहिए। जो मार्केट यार्ड के लोग है, कमेटी के लोग है, फल विक्रेता है, जैसा होटल वाले लोग है, वो क्या करते हैं, सारा गंदगी निकाल के रात के 1 बजे 1:30 बजे
1: चुपके
0: से लाके रास्ते पे फेंक देते हैं। उनसे एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करते हुए आपकी जो समस्या है आप हमारे सामने लाइए। और सर अभी कुछ दिन बाद नाइट में भी घंटा गाड़ियां चलेंगी।
1: क्या बात,
0: उसका भी हमने प्रावधान किया है। जहाँ पे होटल्स का जो वेस्ट आता था वो वेस्ट को कैरी करने के लिए घंटा गाड़ियां आएंगी शहर में। एक तो ये कचरे का विषय होगा और डेफिनेटली सर ये 100% सॉल्व हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: मैं मानता हूँ कि सर अभी मेरी अचीवमेंट इसमें 70-80% आज हो गई है। और मुझे इसमें और दुरुस्ती करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में डेफिनेटली सर मैं जो कमियां हैं उसको भी पूरा फुलफिल करूंगा। सस्टेनेबल शहर की जो आपने क्वेश्चन जो मेरे सामने रखा है,
1: सर
0: उसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलता हूँ। इसमें सर जो पानी लोगों के घर तक नहीं जाता था, हमारे जो प्रीवियस में जो इंजीनियरिंग हुई है वो नासा लेवल की इंजीनियरिंग हुई है। तो कहीं पानी जाता है तो कहीं पानी नहीं जाता है, कहीं तेल पे पानी पहले आता है तो कहीं स्टार्ट पॉइंट को बाद में आता है। तो सर ये सारी चीजों को हमने फाइंड आउट किया और एक एजेंसी हम लोग के पास आई है। 7-8 दिन पहले सर इनसे मेरी बात हुई है। एक 3 मीटर का पाइप वो क्रिएट कर रहे हैं।
1: अच्छी बात,
0: वो पाइप में सर वो पानी डाल के एक नए टाइप से वैक्यूम जनरेट करेंगे।
1: अच्छी बात,
0: वो मतलब एक फर्स्ट फ्लोर पे भी मान लो अगर आपका पानी नहीं जाता है तो विदाउट मोटर आपके पास मे बी पॉसिबल है कि वो विदाउट मोटर पानी फर्स्ट फ्लोर पे भी आपके जाएगा
1: प्रेशर के।
0: और जहाँ टेल पॉइंट में पानी नहीं आता था तो आज वो पानी भी वहाँ टेल पॉइंट पे भी पानी पहुंचेगा।
1: शहर के विकास में नागरिकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, सहयोग की या सहकार्य की अपेक्षा?
0: हाँ सर, ये जो मेरे जो शहरवासी है तो उनसे मैं एक ही अपेक्षा करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी को एक प्रॉपर वे ऑफ मेथड से यूज करें, कि मतलब चोरी ना करें। और सेकेंडली सर जो पानी का विषय है, इलीगल तरीके से पानी की पाइपलाइन ना ले। और इससे दिक्कतें आती है, अगर आपको उतने सक्षम नहीं है तो हमको बताइए,
1: बराबर
0: हम अगर देखते कोई अगर प्रावधान में अगर बैठता है या फिर स्पेशली हम ऊपर डिमांड करेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, गरीब लोग हैं जो अपना कनेक्शन लेने के लिए भी आज उनके पास पैसा नहीं है। स्पेशल केस में अगर कुछ हो सकता है इनके लिए तो डेफिनेटली करेंगे। और सभी से एक आह्वान करेंगे कि भाई जो टैक्स पेयर है उन्होंने टैक्स भरना चाहिए, घर पट्टी नल पट्टी, अगर ये अगर टैक्स भरेंगे तो डेफिनेटली सर इसके रिटर्न में उनके बेनिफिट्स अनइमेजिनेबल, उनको बेनिफिट मैं दूंगा।
1: बराबर,
0: मतलब आज जो कल्पना भी नहीं की थी वो रिटर्न में उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और जो वो टैक्स भरेंगे सर, उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट

0: फैसिलिटीज उन्हीं को मिलेगी।
1: बराबर है सर।
0: और एक आह्वान है कि आप सभी ने वरना आपके माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से आज बोलने का मौका मिला है तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टैक्स भरे।
1: महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा जी, आपने अपने पहले 100 दिनों में कार्य उपलब्धियां और आने वाले समय के विजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: सागर नदिया जैसे सीख लिया है प्यार में हमने मिट कर जिंदा रहना बोलो रहना रहना रहना
1: एक डाल पर तोता बोले

0: हिंदीतल्या बातम्या.
1: मैं प्रियंका अरोड़ा. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया. श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा. इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली. कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी. इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी. श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया. भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है. नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया. भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है. दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं. भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया. आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है. इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है. इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे. इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना

0: घोषणा की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचा 1:05 झालेली आहे। आता प्रसारित करीत आहोत चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जाम

0: एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
2: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता और जनता का धन जाता है आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
3: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं. बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था. हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज

0: Naval shipbuilding is concerned, India has always had an edge and we had carried our legacy forward and in making ships. So very good progress has been made in Atmanirbharta as far as shipbuilding is concerned.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट

0: के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। आज समीर दुबळे यांनी गायलेला राग मधमाद सारंग आपल्याला ऐकवत आहोत। विलंबित खेळाची बंदिश रूपक तालात आहे, द्रुतबंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची 7 श्रीकांत भावे यांनी आणि हार्मोनियमची 7 तुषार केळकर यांनी केलेली आहे। ऐकूया समीर दुबळे यांनी गायलेला राग मधमाद सारंग।

0: आत्ताच आपण युववाणी हा युवकांसाठीचा कार्यक्रम ऐकला. ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती. प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 KHz आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 6 आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या आणि 6:05 इंग्रजीतून बातम्या प्रसारित होतील. त्या आम्ही सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के

0: कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए।

0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament were adjourned for the day today, following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. In the Lok Sabha, amid the uproar, the House passed a resolution by voice vote suspending Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the remainder of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Tenneti said Mr. Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Earlier in the day, Speaker Om Birla appealed to opposition members to allow the House to function smoothly and said the government was ready for a discussion on the NEET issue. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju also reiterated that the government was prepared for a meaningful debate involving all sides under established parliamentary rules and keeping in mind the future of the country's youth. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions over the NEET issue and other matters. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress of

0: अं प्राप्ता। अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अध्यापराहणे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनम् समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः। अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोपि पारितः। पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्। घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः यश्च ध्वनिमतेन पारितः। निरन्तर कोलाहलेन पीठासीनाधिकारिणा लोकसभायाः कार्याचरणम् आगामि दिनं यावत् अपवारितम्। राज्यसभायामपि एतादृशः एव दृश्यः दृष्टिम् अगात्। अपराह्णे त्रिवादने तृतीय स्थगनात् परं यदा उच्च सदनं समवेतं तदा विपक्षिदलानि नीट विषये अन्य प्रकरणेषु च विरोधं प्रादर्शयन्। उपसभापतिः हरिवंशः अवदत् यत् सर्वकारः नीट विषये चर्चायै सज्जः अस्ति, विपक्षेण च सदन संचालने सहयोगः करणीयः। उच्चसदने भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः कांग्रेस दलेन नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य सदने चर्चायां विघ्नोत्पादनाय प्रत्याक्षिपत। अविरत कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिना राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। इतः प्राक् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजु वर्यः सबलम् आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वान् अपि पक्षान् समेत्य एकां उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति।
1: सरकार पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितंबर मासस्य एकादश दिनांके भविता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशाः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय सहैव आसियान संघस्य एकतायै स्वस्य अविचल समर्थनं पुनः प्रत्यपादयन्। उपवेशनावधौ तैः हिन्द प्रशांत क्षेत्रमधिकृत्य आसियान संघस्य दृष्टिकोणस्य समर्थनार्थं क्षेत्रीय समाह्वानानां अवसराणां चापि तैः समीक्षा कृता। चर्चायाः प्रमुख विषयेषु तावत् सामुद्रिक सुरक्षा, अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धिः, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक्यः, आपत् प्रतिक्रियाश्च समाविष्टाः आसन्। उपवेशनमतिरिच्य डॉक्टर जयशंकरः अमेरिका देशस्य विदेश मंत्रिणा मार्को रूबियो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां व्यदधात्। मन्त्री प्रावोचत् यत् एषा वार्ता भारत अमेरिका देशयोः व्यापक वैश्विक सामरिक सहभागितायाः प्राथमिक विषयेषु व्यापार शुल्क ऊर्जा

0: रक्षा सुरक्षा खनिज कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु केन्द्रिता आसीत्। असमराज्ये जलप्लावनस्थितिः साम्प्रतमपि अत्यन्तं संकटापन्ना वर्तते। यत्र राज्यस्य 16 मण्डलानि जलाप्लावेन प्रभावितानि सन्ति। कृष्णेहि राज्ये जलौघेन 21 जनाः पञ्चत्वे विलीनाः, येन अद्यावधि मृतकानामाहत्य संख्या 130 सम्प्राप्ता। आधिकारिक प्रतिवेदनानुगुणं 270+ ग्रामाः साम्प्रतमपि आप्लाविताः वर्तन्ते, येन अशेषस्य राज्यस्य 5,00,000+ जनाः प्रभाविताः अभवन्। राज्यसर्वकारेण 170 आपदुद्धार शिविराणि तथा 200 आपद्वितरण केन्द्राणि समुद्घाटितानि, यैः 12,000+ जनेभ्यः आश्रयः, 1,00,000+ जलाप्लावितेभ्यः च साहाय्यं प्रदीयते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यां प्रचलद्भिः विरोध प्रदर्शनैः व्यथितः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः न्यगादीत् यत् केन्द्रीय सर्वकारः छात्राणां भावोद्गारान् आशंकाः च प्रति अतीव संवेदनशीलो वर्तते। सर्वकारः छात्रैः उत्थापितस्य प्रतिप्रश्नस्य श्रवणाय समाधानाय च पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री सिंहः तीक्ष्णम् आक्षेपं व्यदधत्त यत् कतिपयजनाः स्वकीयान् संकुचित राजनैतिक स्वार्थान् साधयितुम् ऊर्जस्विनीं छात्रशक्तिं राजनैतिक कन्दुकत्वेन प्रयोक्तुं कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति।
1: यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है।
0: संसदि विपक्षेण कृताम् असंसदीय बाधामधिकृत्य रक्षामन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः सर्वस्मिन्नपि ज्वलन्तविषये सारगर्भयुतां विचारचर्चां कर्तुं सदैव सन्नद्धो वर्तते, किन्तु विपक्षः समस्यानां समाधानं संसद्भवनस्य अपेक्षया मार्गेषु कर्तुम् अनुचितं प्रयासं करोति। अद्य लोकसभायां रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनया समुन्नत रक्षणकार्यैः च रेलसुरक्षा अतीव सुदृढा विहिता। लोकसभायां लिखित उत्तराधारेण श्रीवैष्णवेन प्रतिपादितं यत् सुरक्षा कार्याणां व्ययः 13,000+ वर्षे 13,000+ संवर्ध्य 1,20,000+ संजातम्। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां 1:14.9, 1:21.10 इत्यंकांतरालैः पराजित्य महिला एकलवर्गस्य राउंड ऑफ 32 स्पर्धां विजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 kHz आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत।
3: श्रोते हो, आपली लाडकी आकाशवाणी 99 पूर्ण करून 100 वर्षात पदार्पण करते
4: आणि या निमित्तानं 23 जुलैला आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे एक विशेष सोहळा,
3: उत्सव नवचैतन्याचा। वर्षा भावे यांनी संगीतबद्ध केलेली बालगाणी सादर करतील कलांगणचे छोटे कलाकार।
4: पाऊस आणि प्रेमाची काव्य मैफिल रंगवतील मंदार चोळकर आणि रेशमा कारखालीस।
3: मल्हार स्वरांची बरसात करतील गायिका अंकिता जोशी, बासरी वादक निनाद मुळावकर आणि संतूर वादक मंगेश जगताप।
4: गुरुवार दिनांक 23 जुलैला सायंकाळी 5 वाजता
3: स्थळ आहे रवींद्र नाट्य मंदिर प्रभा देवी।
4: प्रवेश निःशुल्क।
3: सर्व रसिक श्रोत्यांना हार्दिक निमंत्रण।
4: उत्सव नवचैतन्याचा।

0: लोकसभेत केली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार चर्चेला तयार आहे, केव्हा किती वेळ आणि कोणत्या नियमानुसार चर्चा करायची हे ठरवूया, असं आवाहन सदस्यांना केलं.
1: हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है. सदन चर्चा के लिए होते हैं, तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं. सरकार कोई भी मुद्दा से भागते नहीं है, और लोकतंत्र में लोगों के प्रति हम जो काम करते हैं उसको जानकारी देना हमारा दायित्व है. हम चर्चा से तो भाग ही नहीं सकते हैं. मैं उल्टा हमारा विरोधी पक्ष ऑपोजिशन पार्टी के साथियों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा तरीका मत अपनाए कि चर्चा रुक जाए.
0: महिला खासदारांशी अयोग्य वर्तन केल्याच्या मुद्द्यावरून संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी अधिवेशन कालावधीसाठी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. सभागृहानं तो बहुमतानं मंजूर केला. त्यानंतरही सदस्यांचा गोंधळ सुरू राहिल्यानं लोकसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. विरोधकांच्या गदारोळात कोळसा खाण

0: play, upload, modify, publish, transmit, update or share any information that is harmful to children or violates any law for the time being in force. He said the Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. Mr. Vaishnav said it mandates parental consent for processing children's personal data and prohibits practices detrimental to their well-being, such as tracking, behavioral monitoring or targeted advertising towards children. The Lok Sabha also extended the deadline till the end of the ongoing monsoon session for a joint parliamentary committee to submit its report on the proposed amendments to the corporate laws. The monsoon session ends on August 13. The committee headed by BJP member Sudhir Gupta is examining the bill which seeks to amend the Limited Liability Partnership Act 2008 and the Companies Act to facilitate ease of doing business, decriminalize minor procedural defaults and modernize the country's corporate governance architecture. On March 23, Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman had introduced the bill in the Lok Sabha, which was then transferred to the committee. And now a review of proceedings in the Rajya Sabha. The writer is Rajesh Ahuja of PTI. The monsoon session of the Rajya Sabha today continued to witness stormy scenes for the third day in succession due to the opposition uproar on the issue of the lathi charge on students protesting at Jantar Mantar, on the issue of leak in NEET Medical College entrance examination. The opposition uproar led to repeated adjournments of the upper house, which was eventually adjourned for the day without conducting any business. The proceedings of the house began with Chairman C.P. Radhakrishnan condoling the loss of lives in an accident at an under-construction hydroelectric tunnel project by the NHPC at Sikkim. Members of the house observed a brief silence in the memory of those who lost their lives. The chairman informed the house that India has achieved a significant milestone with the commencement of operations of the country's first indigenous developed hydrogen-powered train, Namo Green Rail. He said that the train marks India's journey towards a major clean and environmentally sustainable transportation. After the laying of papers, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge stood up to raise the issue of police.
1: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए. सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार. युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित. विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है. मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद

0: कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग

0: 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 OTT प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। श्री

0: सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Speaking in the Lok Sabha

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार
2: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
3: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांवों पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है, Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही।

0: बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है, और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए, तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब एक चौथाई तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा। बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं।
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव गांव से थोड़ा आगे हम जाए, जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी जब बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम, जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों

0: से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें, या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं, कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, और उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है, और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है,
1: जी
0: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग
1: जी
0: इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिन किस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं, और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का, और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा, एक तरीके से एक ये स्कीम बनी, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं,
1: जी
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जा करके जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, हमारी जो जीडीपी का करीब 7%, 7% ये सेक्टर बन गया है, और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं, उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफएमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की

0: जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है। और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है, जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस हो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, फल और उसके जो प्रोसेस्ड है पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में, हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेज़न पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
0: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल है। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स

0: जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाए। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए, और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
2: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही है, उनके उस ज्ञान को। जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की

0: यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से, सड़कों पे फेंक देते हैं। प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही हैं, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पर, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे, तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके, उसको जब आप इस PMFEMA से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। सिर्फ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत

0: थे जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष

चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।